0: સૈન્ય સમુદાયમાં
1: પેલાય ભરી
0: ઓન એર
1: એપમાં
0: અને સ્માર્ટ સ્પીકરમાં બનહોસ
2: પ્લે બીએફબીએસ
1: યુ બીએફબીએસ ગોઠા રેડિયો હો
0: ગોઠા રેડિયો હો.
3: कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दल को बैठक में मुख्यमंत्री इंद्र बानियां आगामी भदौ 3 गति भित्र विश्वास को मत लिने निर्णय गरेको छ. गत साउन 6 गति अल्पमत में रहकर मुख्यमंत्री बानियां आगामी भदौ 4 गति भित्र संसद विश्वास को मत ली सक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ. सत्ता साझेदार दल एमाले सरकार को समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमत में सरकार टिकाउन उहाँलाई अन्य साना दलहरूको समर्थन आवश्यक छ. सत्ता साझेदार दल एमाले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपासँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन साझेदारी गरे.